0: चले अरदास चले अरदास चले अरदास
1: चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए हुरमत तसनो अगली वजो पिदूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गारे तंदर पाए वजो गवाए अगला मुह मुह पाना खाए जिस दा दिता खावना तिसका ये सा बास नानक हुक्म चले नाल खसम चले।

मीत के कर्तव्य कुशल समाना, एक काटेक मेरे मन चीत, जिस किस करना सो हमरा मीत, मीत हमारा बेपरवाह, गुर कृपा ते मोहे असनाहा, मीत हमारा अंतर जामी, समरथ पुरख पार ब्रह्म स्वामी।

हर हर संत मिलो मेरे भाई, हर नाम दृढ़ावो एक किनका। हर हर सीगार बनावो हर जन, हर कापड़ पहर हो खिमका। ऐसा सीगार मेरे प्रभु पावे,

हर हर नाम बोलो दिन राती, सब किल विख काट एक पलका। हर हर दयाल होवे जिस ऊपर,

आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर ना हो ना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस।

गुरु अर्जन बिट्टो कुर्बानी, गुरु अर्जन बिट्टो कुर्बानी, गुरु अर्जन।

ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, पूर्ण पुरख ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो तत स्यो तत मिलायो। अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत शत्र

प्रगट जोत जग मगा पूर्ण पुरख प्रगट जोत जग मगा तेज भूमंडल छायो पारस बरस बरस बरस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूर्त सदा थेर पूर्ण पुरख नहीं डोला ने

0: रंग परंग अनेक न जापन करतबा
1: जिया अंदर जियो सब किछ जानला
0: सब किछ तेरे वस तेरा घर भला
1: तेरे घर आनंद वधाई तुद कर
0: मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता श्लोक पवन गुरु
1: पाणी पिता माता धरत महत दिसरा दोई दाई दाया खेले सगल जगत
0: चंगियां बुरियां आवाज़

शरण परे की रख हो शर्मा, जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राख हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट समय तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन को आज संगरियै। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छोड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन सत्र हमारे मारिया। आप हाथ दे मुझे बरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करिय हो रक्षा। राख लिहो मोहे राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दसकंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनाया, देव दैत जशन उपजाया। आदंती कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आपे अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरयालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील नाद सांब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा।
ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछु भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बहर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव, याद जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठो तो पाता, सकल मिलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रश्या हुए ताय सब काला, दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहार कहा, दारिद दुष्ट दोख ते खड़ग केत मैं शरण तिहारी। आप हाथ दलिहो उबारी, सर्ब ठौर मोहो सहाई। दुष्ट दोख ते लिहो बचाई, खड़ग केत मैं शरण तिहारी। आप हाथ दलिहो उबारी, सर्ब ठौर मोहो सहाई। दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहें हम एक न जान्यों।

जब लो नहीं पाग लिलारे उदय, तब लो प्रमति फिरती बहुतायो, कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। हर का नाम हृदय नित त्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांग।

सुरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम तत्सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम तत्सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवह पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावै साधु अमृत बानी रहा मुक्त भुगत जुगत सच पाइए सर्व सुखा का दाता

आषाढ़त पंदा तिस लगे हर नाहु न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस आषाढ़त पंदा तिस लगे हर नाहु न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस दुए भाई वि गुचिया गल पई सजम की फास जेह बीज सो लुणे मथ जो लिखियास रैन विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिनका साधु पिटिया सो दरगह हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगे

0: सब किसने रे वास तेरा कर भला तेरे घर आनंद बधाई तुद कर हाँ महता तेजी अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कता नानक दासन दास तुदया कै बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आख है लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यायन सच जो मर जमे सो कच्चन कच महला पहला
1: वड्डी वडेई जा वड्डा नाओ वड्डी वडेई जा सच ने आओ वड्डी वडेई जा ने चलथाओ वड्डी वडेई जा ने अलाओ वड्डी वडेई

तीर्थ नावै अर्चा पूजा गरवास बहकार। जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार। सुखम मूर्त नाम निरंजन काया कायाकार। सतिया मन संत

और शेर की थी संतों के दिन सच्चो सत्य आया और मन कर नर ठोकर शुक्र कर्म कमाया और निकल थोड़े बंदरा न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित्य।

0: करता करना मैं ना ही जाओ करी ना हो बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिद्ध सवाले हो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया महला दूजा
1: जो सबदंग ज्ञान सबदंग वेद सबदंग ब्राह्मण है खत्री सबदंग सूर सबदंग सूदर सबदंग प्राकृत है सर्व सबदंग एक सबदंग जे को जाने पेओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।

त्याहक तात सामत सरे कवि कल ठकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार परे छोटत पर।

शब्द मात्र ते उतार तरे कवि कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार परे सत गुर मत गूढ़ बिंब

0: जिनको गुर सो परसन शब्द लग भव जल तारै परचो परमान गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग।
1: सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाने अनभव नेजा नाम टेक जित भगत त्यागाने गुर नानक अंगत अमर भगत हर।

0: तीरथ की गोरे रामदास राखू सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखू सरनाई।
1: सो कहो टल गोर सेविया अहनस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख हो सिफत संबंधी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सच्चे पात सह मल जन्म जन्म सजन सच्चा पात साहो सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा। सजन सच्चा पात साहो सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा हो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सा लाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा। एक पल खिन विसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा। हम मूड़ मुगद सदा से पाई गुर के शब्द प्रगासा। हर जियो तुदनो सदा सालाही प्यारे जिचर काट अंतर है सासा। एक पाल खिन विसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा। हम मूड़ मुगद सदा से पाई गुर के शब्द प्रगासा। हर जियो तुम आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटहो वारिया सद ही तेरे नाम विटहो बल जाई। हम शब्द मोए शब्द मार जीवाले पाई शब्द ही मुक्त पाई शब्द मन तन निर्मल होआ हर वसिया मन आई। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜਿਤ ਮਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਸਿਉ।

से कित आए संसारा, हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया, जम है वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने, मन मुख मुगद गुबारा आपे कर वेख मार्ग लाए पाई, तिस बिन आवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोय ना मेटे पाई, करता करे सो होई, नानक नाम बसिया मन अंतर पाई, अवर ना दूजा कोई, आपे कर वेख मार्ग लाए पाई, तिस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोय ना मेटे पाई, करता करे सो होई, नानक नाम वसिया मन अंतर पाई, अवर ना दूजा कोई, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सालाही प्यारे, जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन विसर है तू स्वामी, जानो बरस पचासा, हम मूड़ मुगद सदा से पाई, गुर कै शब्द।

सच में आशय साच रहे, सब को सच समावे। रिग कह रहे प्रभु राम नाम देवा महसू, ना ले प्राचित जाहे नानक तो मुखंतर पाहे। जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया, पार जात को पी ले आया बिंद्रावन में रंग किया। कल में वेद अथर्वण हुआ ना खुदाई अलहो भया, नील बस्तले कपड़े पहने तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद होए सचार पढ़े गुण है तिन चार विचार, पाओ भगत करी नीच सदा तो नानक मोखंतर पाए पौड़ी सत।

0: दयाक पासे तो सूत जत गंडी सत वट ए जनेऊ जी काहे त पांडे घत ना हो टुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए धन समान नानका जो गल चले पाए चौकड़ मलन आया बे चौका पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थया ओ मुआ चढ़ पाया वेत गा गया महला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गा लख ठगियां पहनामियां रात जी ना तग कपाह कतिये बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सब को आखे पाए होए पुराना सुटियां पी फिर पाई है हो नानक तक न टुटे जे तक होवे जोर महला पहला
0: नाय मने पा तू पजै साला ही सच सूत दर गए अंदर पाई है तक न टुट सूत महला पहला
1: तक न निंद्री तक न नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तक न पैरी तक न हथी तक न जेवा तक न खी वे तक गया पे वत्ते वरता गे वरा कत्ते ले पहाड़ करे भी आहो कड़का गल दसे राहो सुन वेखो लोका एह विडान मन अंधा ना सजान।

गुरु बोलो जे। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए, गुरद्वारियां दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया, सिखी केसां सवासां नाल निभाही तना दी कमाई दा ते आ

गुरु बोला जे सिखां दा मन नीवां मत उच्ची मत पत दा रखां आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जिया श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शा हे नमाणिया दे माण नेताणिया दे तान ने ओटिया दी ओट धन धन।

0: मन का सूतक लोभ है, जेहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना परत्रे पर तनरू, कनी सूतकन पहला इतबारी खाहे, नान कंथन सयाद मी, बदे जम प्रजाहे महला पहला।
1: सबो सूतक परम है, दूजे लगे जाए,